की जय। फॉर दोज हु आर रियली मटेरियलिस्टिक इन द वर्ल्ड टुडे इट विल हैव नो मीनिंग फॉर अस, बट फॉर दोज ऑफ अस हु हैव टर्न्ड आवर विल टू गॉड विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ दैट एज वी मूव अलोंग इन दिस वर्ल्ड इन व्हिच वी लिव इन द ओनली ट्रूथ टू दिस वर्ल्ड इज द लॉर्ड फॉर वन डे वी विल ऑल मर्ज एंड बी विद दैट वेरी लॉर्ड। गोस्वामी तुलसीदास जी टेल्स अस फर्दर इन कथा।

की जय। सभी ग्लोरीफाई भगवान विद दिस फाइनल भजन कथन। बोथ हैप्पीनेस एंड सोरो आर टेम्पररी। द भजन सेज हैप्पीनेस एंड सोरो आर टेम्पररी। यू डोंट नो व्हेन इट कम्स और व्हेन इट गोज। हैप्पीनेस इज लाइक दिस सन, इट इज प्रेजेंट द एंटायर डे बट गोज अवे इन द आफ्टरनून, इट विल नॉट बी देयर फॉर एवरी एवरी।

स्टेशन तेरे मेरे दो दिलों की मंजिल तो है लव स्टेशन। सबसे पहले आई हूँ करने दिल का रिजर्वेशन, तू जो चाहे ले ले मेरे दिल का एग्जामिनेशन।

सुखां चराचर जगत् संरक्षणीं सत्पदां चंचन चंपक नासिकाग्र विलसन् मुक्तामणिरंजितां श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये ओम श्री दुर्गा लक्ष्मी सरस्वतीभ्यो नमः।

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं हो।

सूर्याय नमः, आदित्याय नमः। श्रोताओ, भगवान सूर्य जिन्हें आदित्य नाम से शास्त्रों में जाना जाता है, वे इस सृष्टि के साक्षात देवता हैं जिनका प्राणी प्रतिदिन दर्शन करता है। आइए भगवान सूर्य नारायण के चरणों में नमन करते हुए उनका गुणगान करें।